You are tuned to the voices of the subcontinent. रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामायिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर एक घंटे के लिए बने रहें। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को थी और गणेश विसर्जन 25 सितंबर को है। आज हम हार्मनी की शुरुआत आशा भोंसले और आदर्श शिंदे के गाए गणेश भजन से कर रहे हैं।

देवा हे देवा गणपति देवा, ये भजन गाया था आशा भोंसले और आदर्श शिंदे ने। संगीत दिया था विकी प्रसाद और राम लक्ष्मण ने। बोल लिखे थे रविंदर रावल ने। दोस्तों, सितंबर के महीने में अब ये तिथियां हैं इस प्रकार। बलराम जयंती 16 सितंबर की है, विश्वकर्मा पूजा 17 को है, 19 की महालक्ष्मी व्रत शुरू होता है, 23 को वामन जयंती पड़ती है और ऑटमनल इक्विनॉक्स शुरू होता है, और 25 को गणेश विसर्जन। इंटरनेशनल डेज में 16 को इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर द साउथ, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। It is also the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. 17 को World Patient Safety Day है, 18 को International Equal Pay Day और 20 को World Cleanup Day. और भी International Days हैं इस महीने में, जो हम आपको आगामी कार्यक्रम में बताते चलेंगे। दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम हर साल 21 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत में हम प्रधानमंत्री मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। रेडियो हार्मनी, रेडियो जेम, इंटीग्रेटेड कल्चर्स और चेरिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घ आयु, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

शुभ जन्मदिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसे गाया था और कंपोज किया था कैलाश खेर ने। वोकल्स के कोरस में थे राहुल चिटनिस, विवेक नायक, संतोष बोटे, मंगेश शिरके, अनिल भिलारे और सागर लेले। दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। मोदी 2001 से 2014 तक संतोष बोटे, मंगेश शिरके, अनिल भिलारे और सागर लेले। दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2014

हिंदुत्व अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन है उसके सदस्य हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। मोदी का जन्म और पालन पोषण वाडनगर बॉम्बे राज्य में हुआ, जो कि वर्तमान गुजरात में है, जहां उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। 8 साल की उम्र में उनका आरएसएस से परिचय हुआ और वे 1971 में गुजरात में संगठन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1985 में आरएसएस ने उन्हें भाजपा में नियुक्त किया और वे पार्टी पदानुक्रम में आगे बढ़ते गए। 1998 में महासचिव बने। 2001 में मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और इसके तुरंत बाद वे विधानसभा के लिए चुने गए। उनके प्रशासन को 2002 के गुजरात दंगों में संलिप्त माना जाता है और इस संकट के प्रबंधन के लिए उनकी आलोचना की गई है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें से 3/4 मुसलमान थे। स्वतंत्र स्रोतों के अनुसार 2000 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल को उनके खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। जहां एक ओर मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर राज्य में स्वास्थ्य, गरीबी और शिक्षा सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार न कर पाने के लिए उनके प्रशासन की आलोचना भी हुई है।

डेडिकेटेड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द कंट्री ऑफ टुडे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन सॉन्ग बाय डॉक्टर दीपक जी एंड म्यूजिक मेरे बहुत ही प्रिय मित्र को म्यूजिशियन somebody whom यू नो वी लव ईच अदर सो मच रूप भाई रूप कुमार राठौर जी. हम लोग सब मिलके इसे बनाए हैं. थैंक्स टू आदि एंड निसर्ग फॉर पुटिंग दिस टुगेदर. आई एम रियली privileged एंड ऑनर्ड दैट मेरी आवाज़ में एक गाना है विच इज़ डेडिकेटेड टू आवर ऑनरेबल पीएम.

ये था शंकर महादेवन का गाया स्पेशल सॉन्ग फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बट दिस वॉज संग ऑन हिज 74th बर्थडे। दोस्तों, 2014 के भारतीय आम चुनाव में मोदी ने भाजपा को संसदीय बहुमत दिलाया, जो 1984 के बाद किसी पार्टी के लिए पहला बहुमत था। उनके प्रशासन ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाया और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च कम किया। मोदी ने एक उच्च स्तरीय स्वच्छता अभियान शुरू किया और पर्यावरण एवं श्रम कानूनों को कमजोर या समाप्त कर दिया। 2016 में उनके बैंक नोटों के विमुद्रीकरण और 2017 में माल और सेवा

सेवा कर की शुरुआत ने विवाद को जन्म दिया। मोदी के प्रशासन ने पाकिस्तान में एक कथित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर के खिलाफ 2019 बालाकोट हवाई हमला किया। हवाई हमला विफल रहा, लेकिन कार्रवाई में राष्ट्रवादी अपील थी। मोदी की पार्टी ने 2019 के आम चुनाव में जीत हासिल की। अपने दूसरे कार्यकाल में उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया और नागरिकता संशोधन अधिनियम पेश किया, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और 2020 के दिल्ली दंगों को बढ़ावा मिला, जिसमें मुसलमानों को हिंदू भीड़ द्वारा क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के कारण देश भर में किसानों ने धरना दिया। 2024 के आम चुनाव में मोदी की पार्टी ने संसद के निचले सदन में अपना बहुमत खो दिया और राष्ट्रीय जनता जनतांत्रिक गठबंधन NDA के नेतृत्व में सरकार बनाई। भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर में एक आतंकवादी हमले के बाद मोदी ने 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष की अध्यक्षता की, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध विराम हुआ। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक पतन का अनुभव किया है और एक सत्तावादी शासन शैली की ओर रुख किया है, जिसमें एक व्यक्तित्व पंथ उनके इर्द गिर्द केंद्रित है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें भारत के भीतर लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। मोदी को दक्षिणपंथी राजनीति की ओर एक राजनीतिक पुनर्संयोजन की योजना बनाने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। वह अपने हिंदू राष्ट्रवादी विचारों और गुजरात दंगों से निपटने के तरीके को लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यधिक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्हें एक बहुसंख्यकवादी और बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। पिछले वर्ष 75वें बर्थडे, मोदी जी के 75वें सालगिरह पर पुणे टाइम्स मिरर समाचार पत्र ने बताया था कि पुणे में सहायता शिविर और संगीत संध्या के साथ प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए पहली बार ड्रोन शो का आयोजन किया गया। पुणे के सांसद और केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी के 11 साल के कार्यकाल की झलकियां दिखाई गई। मोहोल ने घोषणा की कि ज्योति ने तेजाची आरती शीर्षक वाला यह ड्रोन शो प्रधानमंत्री के अमृत महोत्सव जन्मदिन पर पुणे की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि थी। अयोध्या और वाराणसी में इसी तरह के आयोजनों के बाद यह महाराष्ट्र का अपनी तरह का पहला ड्रोन शो था, जो एक विकसित भारत के विजन का झलक पेश करता था। माहौल के कार्यालय द्वारा क्यूरेट किया गया 45 मिनट का एक 3D ड्रोन शो न केवल मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता था, बल्कि पुणे के प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को भी प्रदर्शित करता था। यह शो एक विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के विजन को दर्शाता था। 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग रात के आसमान में उड़ते हजारों ड्रोनों के हवाई प्रदर्शन को देख सकते थे। मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पंढरवाड़ा के तहत पूरे देश में मनाया गया। उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 16 सितंबर को पुणे के SP कॉलेज परिसर में
एक ड्रोन शो, एक सहायता शिविर और एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। माहौल ने बताया कि पुणे के 75,000 से ज्यादा छात्र पोस्टकार्ड के जरिए प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहे थे। 16 सितंबर को एसपी कॉलेज परिसर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक दिव्यांग जनों के लिए एक सहायता शिविर भी शामिल था। 1200 से ज़्यादा लाभार्थियों को 1750 से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें मुफ्त में दी गईं। माहौल ने बताया कि शिविर के बाद शाम 5 से रात 10 बजे तक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार अवधूत गुप्ते का एक लाइव कॉन्सर्ट भी हुआ।

जूही की कली मेरी लाडली, ये था सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म दिल एक मंदिर से ये गीत। ये फिल्म 1963 में रिलीज़ हुई थी और इसके संगीतकार थे शंकर जयकिशन, बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। तो दोस्तों, ये इसके साथ ही हमारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का खास कार्यक्रम यहीं पर अब हम ख़त्म करते हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है हर साल। ऑन दिस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, लेट अस ऑल बी इंस्पायर्ड बाय द करेज ऑफ दोज हु चैंपियन पीस इन नेबरहुड्स, classrooms and communities, and let's call on world leaders to invest in a peaceful future for all people. This was a quote from the United Nations Secretary General Antonio Guterres.

खुद जियो औरों को भी जीने दो। ये गीत गाया, लिखा और संगीतबद्ध किया प्रेम धवन ने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी, जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है, पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर। मैं आपका प्रस्तुत करता हूं अरविंद गुप्ता। वी आर लुकिंग एट द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस विच फॉल्स ऑन सितंबर 21 एवरी ईयर। द थीम फॉर दिस ईयर इज इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीडे। एंड द फोकस इज ऑनरिंग एवरीडे पीस आर्किटेक्ट्स, लोकल एक्शन एंड बिल्डिंग सस्टेनेबल फाउंडेशंस थ्रू सेफ्टी, डिग्निटी एंड कोऑपरेशन। यूनाइटेड नेशंस हैज सम ट्रेडिशंस ऑन दिस ओकेजन फ्रेंड्स। द डेट इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन सितंबर 21 एवरी ईयर। द एनुअल पीस बेल सेरेमनी एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स फीचर्स ए मिनट ऑफ साइलेंस एंड द रिंगिंग ऑफ द पीस बेल। कम्युनिटीज एंड स्कूल्स होस्ट इवेंट्स, पीस सर्कल्स एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज यूजिंग द हैशटैग इन्वेस्ट इन पीस। On 21 September, the world marks the International Day of Peace. Today, amidst staggering volatility, the search for peace feels overwhelming, but it has never been more urgent. Peace is more than the absence of war. It is the foundation necessary to collectively tackle humanity's challenges. It is the lived experience of safety, dignity, opportunities and cooperation in our daily lives. Under the theme Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day, this year's International Day of Peace honors the everyday architects of peace, people driving local action, laying the groundwork for stability and building a lasting peace from the ground up.